एक है हरी हरी, ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी।

जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

सम्मान को सत्संगी सज्जन पवित्र आत्माओं गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पातशाही पवित्र कलमा अंदर अमृत वेले दियां हाजरियां भर रहे हो सोहने दरबार प्यारी दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश दोगे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हां उत्ते गुरु का कर्म होए जिन्हां ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने ये सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया एको जप एको साला एक सिमर एलो मनया एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जी कोई समय ली एकाग्रता बख्श नहीं जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए हैं वो मिनटा नु असा सफल करना है सब तो पहला मन चित बिरतिया नु टिकाव च लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सगना आ वेख लिया जी हुणे किन्ना बिखड़ा है किन्ना मुश्किल है नहीं आख्या जांदा सारे कोल आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान विच है ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहेगुरु आखना मुश्किल है एक वाहेगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना देखिया जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैठा कर्म करना हो ना अधी रात दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करना बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊट खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलाण आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा सानूं ते कलयुग पिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकदा ये ओही कह सकदा जिसे ते गुरु नानक जी कृपा होएगी एक बारी आखो तुलसी जी का बचन एक पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा तुहानू आखण औखा साचा ना क्यों औखा है तुलसी जी ने शलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आंदा मैनू भी स्वाद आंदा की कहंदे तुलसी नाम जो राम को जिन्हां ने रामायण लिखी है जिन्हां ने राम का जीवन पेश किया बयान किया है खोलिया है खुलासा किया है कहंदे तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहिगुरु का नाम नाम सारे ही उदेश असा त्रेड़ा पाईया असा विथा पाईया असा दुआरा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदेश नाम च कोई फर्क नहीं साढ़े जपन च फर्क है बड़ी प्यार की गल कह रहा तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज भावे रीत किल लै ते भावे खीज किल लै रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी एकाग्रता खीज का मतलब पंजाबी का लफ्ज
फड़ के आखना, कुड़ के आखना, गुस्से नाल आखना, यो मानो के मजबूरी नाल आखना। एक काम भी होंदा है ना बच्चा जिहड़ा मजबूरी नाल करदा है, बापू कहंदा है कि अमृत वेले उठना है, पर बच्चा मजबूरन उठता है, चित नहीं करदा, पर बापू दा हुक्म ते है, मां दा हुक्म ते है, एक मजबूरी नाल भी करना पैंदा है। तुलसी जी ने कमाल कर दित्ती, कहंदे ने ए इंसान ए बंदे अज गया तू, भावे खुशी नाल कह लै ते भावे औखा होके कह लै, वाहिगुरु ने तेन फल देना है। वो कहंदे ने तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज, ते किसे ने आख्या है तुलसी जी एक ऐसा श्लोक उचारिया जे जे खुशी नाल याद करिए फल देंदा है, झोलियां भरदा है, बरकतां देंदा है, इच्छा पूरियां करदा है, ते जे प्रभु नु गुस्से नाल याद करिए, जे प्रभु नु औखा होके याद करिए, वो भी कुछ देंदा है, तां भी कुछ देंदा है। तुलसी जी कहंदे देंदा है तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज, कहंदे धरती पर सो उगत है उल्टो सीधो बीज, भावे बीज सीधा पै जाए भावे पुठा पै जाए, जदों किसान छट्टा मारदे ना धरती विच कोई सीधे पै जांदे ने कोई पुठे पै जांदे, सारे बीज मूवी पैंदे ने सीधे ते पुठे सारे। कहंदे ने बीज ही ए प्रभु दा नाम जिहड़ा है ना ए बीज हैगा ही, भावे तू खुशी नाल कह लै ते भावे मजबूरी नाल कह लै ते भावे मेरे खोए आख रहे, एदा फल तेनू अवश्य मिलेगा। एक बारी बोलो सतनाम। एवें नहीं पातशाह कहंदे ने जपो ता एको नामा, पढ़ो ना आखो ना जपो ता।

तुसा खुसरो नू राज तिलक दिता है, बादशाही दी असीस दिती है, 5000 नगद दिता है, अते उसनू लंगर छकाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, बादशाह जहांगीर, गुरु का लंगर सब लई सांझा है। इत्थे भावे कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, जैनी आवे, बोधी आवे, जोगी आवे, सन्यासी आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, काफर आवे, पंडित आवे, चमार आवे, राजा आवे, कंगाल आवे, सिख आवे, सिख दा वैरी आवे, सब नू लंगर मिलदा है ते मिलदा रहेगा। तेरा पिता जलालुद्दीन अकबर भी तां इसे ही लंगर विच बैठ के प्रशादा छक के गया सी, जे अज तेरे पुत्र ने छक लिया तां केड़ा हनेरा आ गया। बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहिब, तुसी अपने किते जुल्मां ते इकबाल करदे हो, इस करके तुहानू 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए माया सारी गरीबां दी है, ते जुर्माना एक कौड़ी भी नहीं दिता जा सकता। तब बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहिब, मेनू पता लग्या है कि तुसा एक ग्रंथ लिखा है, तुहाडे बचन दा इको एक तरीका है कि तुसी उस विच हजरत मुहम्मद साहिब ते इस्लाम दी तारीफ दे कुछ लफ्ज पा दियो, ता तुहाडा गुनाह माफ कर दिता जाएगा, जे नहीं ता मरन वास्ते तैयार हो जाओ। ता हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए ग्रंथ इलाही हुक्म विच लिखा गया सी ते संपूर्ण हो चुका है, हुण इस विचों ना कोई अक्षर कढ़िया जा सकता है ते ना ही पाया जा सकता है। हां, जिथों तक मौत दा सवाल है, सानू परवान है। जदों गुरु साहिब ने मौत परवान कर ली, तां बादशाह जहांगीर ने यासा व यासा दी सजा दा हुक्म दे दिता, जिस तो भाव है कि शरीर नू इन्ना कष्ट दिता जावे कि शरीर खत्म हो जावे, पर शरीर विचों एक तुबका भी खून दा बाहर ना निकले। बादशाह जहांगीर ने ए ड्यूटी चंदू दीवान नू दे दिती। चंदू दीवान दी ड्यूटी लगाए जाण विच भी बादशाह जहांगीर दी एक चाल सी। उस चाहुंदा सी कि गुरु साहिब नू किसे हिंदू कोलों शहीद करवाया जावे, ताकि वह खुद हिंदू प्रजा विच बदनाम ना होवे। उधरों चंदू दीवान ने भी केड़ी कट कीती, उसने गुरु साहिब नू कई दिन जेठ दियां धुप्पां विच खड़े रखिया, ना कोई रोटी दित्ती ना पानी। फिर एक उबलदी देग उबाल के गुरु साहिब नू उस विच बिठाया गया, अते फिर एक लोहे दी तवी गर्म करके गुरु साहिब नू उसे बिठा के सीस उत्ते तत्ता तत्ता रेता पाया गया। जिस तरह चंदू दीवान गुरु साहिब नू बदल बदल के तसीहे दे रहा है, उस दर्दनाक दृश्य नू आपदी सेवा विच इस तरह बयान किया जा रहा है।

घर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दा तो नित ही पै रही हन असी सुनिया अनसुनिया कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा हुंदा है कोई अर्थी जा रही हुंदी है ओ सानू चेता करा रहा हुंदा है ए मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदड़े दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों किया कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है वो केड़ी आउंदी है जदों असी सौ जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ए मनुख एक दिन सोमन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा सवेगा कि कोई तैनू उठा ल ना सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए तां इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नूं नमित परलों के जदों श्वास समाप्त हो जान तां मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उत्थे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिमें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करते सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नू अमृत वेले भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे ता फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है तो अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताके तेरा जीवन सफल हो जाए तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हैं ए सदा कह रही हैं भाई सदनहारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर का कलिया होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कलिया होया आउंदा है जेड़ा किसी का भेजिया होया आउंदा है वो कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई काम करन लई आउंदा है ते अकाल पुरख वाहेगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजा है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तेनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ए एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख चौरासी परम दिया दुर्लभ जन्म पाए एक दस बंदियां दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी चौरासी लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिणीए ता कई जूना विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तेनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख चौरासी
84 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਵਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂੜੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸਦੇਵ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਮੂੜੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਧੜੇ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

जुम्बला वह तुम बोले है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी जस करो वाहिगुरु दा प्यारे चितनु एकाग

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुनरे मना कर कीर्तन होए उधार। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तार हर दरगह पत सिंह जाइंदा।

0: सतगुरु जुग जुग अटल चवर तख्त मालक दसम पातशाह दी जग दी जोत शब्द अवतार संसार दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र गोद विच दूरों नेड़े चल के जिन्हें भी माई पाई सतसंगत हरी जस कीर्तन का लाभ उठाउन दे लई गुरु दरबार विच कोबड भागे हो आओ अपने मन नु एकाग्र करन दी कोशिश करो अपनी सुरती नु अखां नु बाहर जाण तो रोको इधर उधर वेखण दी कोशिश ना करो गुरु स्वरूप दा ध्यान करो क्योंकि हरी जस कीर्तन सत्संग का पूरा लाभ ता ही प्राप्त हो सकता है जे साडे तन दे नाल मन भी इत्थे हाजिर होवे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु
0: क्योंकि यह सब सुनाउणा मन नूं है तन नूं नहीं है तन तां इक जरिया है सो गुरु जी कहिंदे ने प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत जदों मन एकाग्र हो जाएगा गुरु शब्द दे नाल जुड़ेगा हरी जस कीर्तन च जुड़ेगा भुख दुख गर्मी सर्दी सब लगन तो हट जांदियां हन क्योंकि सेवक उही हुंदा है सतसंगी उही हुंदा है जिहड़ा भुख प्यास ते कंट्रोल करे गर्मी सर्दी सहार सकदा होवे दुख सुख की परवाह ना करे मान अपमान तो उपर उठे अते अपने मन नू अपने काबू विच रखे कंट्रोल करे बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो ये साडे चंगे भागां दी निशानी है कलयुग दा बड़ा भयानक समा है ऐसे समय दे गुरु दी शरण मिल जानी सतसंगत मिल जानी अच्छा करके निश्चय करके ये साडे चंगे भागां दी निशानी है सो कदम सफल कीते ने गुरु वल चल के नेत्र सफल कीते ने दर्शन करके सीस सफल कीता नमस्कार करके मत्था टेक के अपनी जबान भी सफल करया करो गज बज के तिना हिस्सों के बिच बोल के

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन
1: धीरे।
0: किस तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति रुक जाए, किस तरीके दे नाल ए मन जिहड़ा दशां दे समझ भज्जिया फिरदा है, सुपने विच भी नहीं टिकदा, सुत्तां पिआं भी टिकदा नहीं है, संगत विच भी नहीं टिकदा है, सब कुछ पा के भी टिकदा नहीं है। कबू जिगेड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पायाले, लोभी जेरा थर न रहता है, चारे कुंटा
1: पाले,
0: वस्तु नहीं मिलती दुखी हुंदा है, जदों मिल जाती है फिर होर वध दुखी हुंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, केड़े तरीके दे नाल मन धीरज विच आ जाए, किस तरीके दे नाल मन दी गति धीमी पै जाए, कुछ कंट्रोल विच हो जाए। बिन हर नाम ना शांत होए, गुरु जी कहिंदे हन बाणी दे विच, रब दे प्यारे दसदे हन भाई असीं विछड़े होए हाँ भाई, तू इस करके दुखी है, तू विछड़िया होया है, अपने मालक तो विछड़िया होया है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अपने मालक तो विछड़िया होया है, तू अपने केंद्र तो टुटिया होया है, तू अपने धुरे तो अलग होया होया है, जिन्ना चिर तू नहीं मिलता उन्ना चिर तेनू दुनियावी शांति घड़ी दी घड़ी भावे मिल जाए, परंतु असल शांति नहीं मिलेगी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: क्योंकि शांति भी तीन तरह की होंगी है, एक शरीर तल की शांति, शरीरक तल की शांति, शरीरक भोग पदार्थ खाण पीन दे नाल जवान थोड़ा चिर बस पेट भर जूगा, जवान थोड़ा चिर बस कह देगी, परंतु थोड़े चिर बाद फिर वही भुख लग जाएगी। इसे तरह मन, मानस भोग पदार्थ ते फिर कुछ चिर वास्ते मन तृप्त हो जाएगा, सदी भी तृप्ति नहीं है। आत्मक शांति जिहड़ी है, जो परमेश्वर दे नाल जुड़िया सत्संग सेवा सिमरन दे नाल मिलदी है, उही सदीवी शांति है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उही सदीवी शांति है जो आके जांदी नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो उस नूं आत्मक शांति कहिंदे हां। सो नहीं तां गुरबाणी दे विच गुरदेव बहुत प्रमाण दे दे के खोल खोल के समझाते हैं, मैं तू बाकी छोटे मोटे की गल्ला छड़ दे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जावे हे मनुख, सारी सृष्टि का। बाकी माड़ी मोटी गल छोड़ो, छोटा मोटा कोई अपना बन जाना, कोई अहुदा मिल जाना, कोई इलाके का मालक बन जाना, कोई होर कुछ माड़ा मोटा ज्यादा कुछ बन जाना, सारी सृष्टि का राजा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं भाई, जेकर वह रब दे नाल नहीं जुड़िया, जेकर वह परमात्मा का नाम नहीं जपता, जेकर वह उस दाते नूं भुल गया है, फिर उसकी सारी सृष्टि की, सृष्टि के मालक की हालत की है,

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी के में होएगा पाए। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असीं सोचदे हां भी नाम जपना कि सानू नाम जपन नाल ही सुख मिल सकता है, फिर बड़ा औखा है नाम जपना। दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है। सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं किथे जावांगे। नहीं, गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, जोगियां ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे साध संगत उन्हां दी कन्ना पाड़ के मुंदरां पवा दित्तियां, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जोग दे नाल भी जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया।
0: तीर्थां दे बैठ गए, वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना। पाठ परिवार वेद विचारियो, निमर पहंगम साधे, पंच जना संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिल ना जाई। मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका।
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत ना होया। बोलो
1: सतनाम
0: पर्थरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने जोग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई। अजे भी कहते हैं हे नारद,

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हाँ, रास्ता दस दिंदा हाँ। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाने की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उठे तेनू शांति मिलू, तेनू सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनू कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनू दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नूं किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नूं अराध याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उस नूं गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उन्हूं दर ते आए नूं भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अनाधिकारी नूं तू याद कर, बेनतियां कर, सो वक्त आया, समा आया। ओही पार्थर, होर बहुत सारे योगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो बैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करदा है, दोवें ही काम करदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी योगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिद्धियां सिद्धियां विखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे योग दे विच आ जाए, किन्ना योग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला योगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आं कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु क्या नू किधरू भाजना पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना कीती। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब नू कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं कीती, सगा कहा कि गुरुआ नू किधरू भाजना पै गई, गुरु के महल नू

आज आप अपनी जगह तोड़ के अगा हुए और पज के माता गंगा जी दे सिर तो प्रशादे अते लस्सी दी चाटी पकड़ ली और नाल कहन लगे मां अज बड़ी देर कर दी थी, आई ते भुख भी बड़ी लगी, कैसा रिश्ता है जिदे कोल पुत्र मंग

आप करा है। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जदों घरां नूं जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वे

तो दर्शन ड्यूटी कोल आईया संगता ते हाथ जोड़ के सारिया संगता खड़िया हो गई है रो पाई पहला गुरु तो आ गया ते ले लेंगे आ गया कि में लेगी वाह गुरु तेरी आ गया मंगन दा कितना

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कोई पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़े हुए है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदे गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं

एक पासे दास दूजे पासे वीर ते तीसरे पासे भैरां इस शब्द नूं दो चार दफा होर कह लो। पहला दास बोलणगे फिर वीर बोलण ते फिर भैरां बोलणगे।

निकलता है। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तो आओ गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज का जीवन आप सारे रल के विचार करिए। जीवन तो पहला भाई गुरुदास जी की उचारी हुई पौड़ी हर कृष्ण पयो अष्टम बलवीरा। आओ आप सारे रल के इस शब्द की विचार करिए।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

आखन लगे दिलफरोश अज कुछ कीमत घट की है, कुछ मुल घटाया या कल वाला ही है। आखन लगा जी क्योंकि जिनस भी होई है, पदार्थ भी होई है, वस्तु भी होई है, इसलिए मुल भी रखा है। लेकिन सतगुरु कहन लगे लेकिन का क्या मतलब, कुछ ये रू रैत है। आखन लगा हां जी एनी है, जेडी ओदी अवस्था है, जेडी ओदी हालत है, उसने आप बाकी कहन लगा महबूबा दे पूछे।

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने मिताने हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर

उसने कुरान शरीफ की कसम खाधी। पहाड़ी राजिया ने आटे की गऊ बना के कसम खाधी है ये साढ़े ते हमला नहीं करनी। पर गुरु साहब ने कहा इन्हां ते भरोसा ना करो, इन्हां कसमां तोड़नियां ने साढ़े ते हमला जरूर करना। इस तरह करदे हैं

अज भी एहो जे लोग आए ने जेड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने सिखी छड़दे ने अमृत तो दूर ने पर जेड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं अपने गुरु दे उपदेश

इस इलाके की जानकारी दो। अगर वजीर खान दे नाल किधरे लड़ाई हो पवे तां तुसां विच हिस्सा नहीं लेना हो सके तो गुरु

ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैला सरदारा नू लगदे ने ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दे हैं 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपाना कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने जदू देखिया महसूस कीता ते गुरु साहिबां नूं खुद ए गल लिखनी पई। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी, दियो ओज ऐसो हजारन जैसो, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े उत्साहे रणन छत्र गाहे। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी, के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे। कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए। हाथियां नूं भी कीड़ियां दे समान समझदे ने, बड़े उत्साहे बड़े उत्साह विच लड़दे ने। रणन छत्र गाहे, रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान, लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नूं अपने पैरां थले लताड़िया। चले वीर सोउ बड़े उत्साहे, परे शस्त्र मारे, महा जंग माही कड़े म्यान तेग, गहे अथ ढाले चलाकी करन ते सोछाले उछाले। म्यान विचू तेग कटी, हथां विच ढाल फड़ी, बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे, वार बचांदे वार कर दे, ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए। साहिब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया। कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले, चलाकी करन ते सुछाले उछाले, आखीर चटापट जुटे लटा लट होए, सटापट सुटे कटाकट जोए, कटाकुट कटे चटापट मारे, खटाखट खोटे हटा हट हारे। आखीर लड़दे मरदे

जिन्ना बल सी सारा ला दिता है, हुण ते पासा परतन दी भी हिम्मत नहीं, हुण कर कृपा मैनू दर्शन दे, ओ बिदावा पाड़ दे जिदे ते लिखे है तू साडा गुरु नहीं असी तेरे सिख नहीं।

देश जिथे कभी मौत नहीं जिथे हमेशा जीवन है जेड़ा अज तू उपकार कीता अपनी जान दे के एदा फल कदी भी खत्म नहीं होवेगा।

नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा को जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नु धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नु दुख दिंदा है, वो जो मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जिउंदा है, जिन्हों रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते ओदे प्यारे पूरे।

योदे सर्वांशदानी अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां इस दुनिया में आके एक नवा काम किया।

कुछ कह रही, वाणी आवाज दे रही, वाणी कुछ बोल रही, जीव सुन वाणी की कहंदी, वाणी तेनू आवाज क्यों मार रही, वाणी तेनू क्यों बुला रही, ते वाणी की आख दी है, सुख मानी सुख अमृत पा

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली है। वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਾ ਕਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

जेड़े श्री अमृतसर नू जांदे ने उन्हां कोलों मैं मजदूरी नहीं दे लैंदा। ए बजुर्ग बड़ा हैरान होया, तू किहो जिहा मजदूर है, कोई पैसा नहीं जे लैणा? नहीं बाबा, जेड़े सतगुरां दे दर्शन नू जांदे ने उन्हां कोलों मैं पैसे नहीं दे लैंदा। तुरे जा रहे ने, तुरे जा रहे ने, सतगुरां ने बख्शिश कीती कि श्री अमृतसर पुजे ने, पर कर्मां दे विच अपने सिर तों ए कपड़ियां दी पांड लाई, बाबा आ प्या ते तेरा समान ते मैं हुण चलिया। ते बजुर्ग बाबा बड़ा हैरान होया, तू किहो जिहा मजदूर है? सारे रस्ते गुरु दियां गल्लां सुणांदा आया ते पैसा भी कोई नहीं दे लिया। भई तेरे वर्गा चंगा बंदा कदों जिंदगी विच मिलदा है? आ इंज ना जा, बाबा आख रहा है, इंज ना जा, सवेरे सतगुरां दे दर्शन करके जावी, सवेरे दीवान लगना है। मेरे मालक दीवान विच आउणगे ते सतगुरां दे दर्शन करके जावी। इस नौजवान ने आखिया, बाबा हुण मैं जावां, दे तू आखदा है मैं सवेरे फिर आ जावां। बाबे ने आखिया, इंज करी दीवान विच आ जावी ते इकट्ठे ही सतगुरां दे दर्शन करांगे। चंगा बाबा, मैं तैनू सवेरे दीवान विच मिलांगा। ते सतसंगियो, सवेर होई है, दीवान सजिया है, तन गुरु अर्जन दे पातशाह तख्त ते बैठे ने, ते बहुत सारियां गुरसिख संगतां नमस्कार करन वास्ते खलोतियां ने। लंबी लाइन लगी हुई है ते बिच बाबा भी नमस्कार करन वास्ते खलोता है। बारी आई जदों इस बजुर्ग बाबे ने सतगुरां दे चरणां ते नमस्कार करके सतगुरां दे चेहरे वल तकिया ते तबक के औ परे जा डिग गया। सतगुरु बोले, बाबा की होया जे? बाबे दा शरीर कंबण लग पिया, मुख दे विचों बोलिया नहीं जा रहा। सतगुरां ने आखिया, बाबा की होया जे? हाथ जोड़ के आखन लगा, सतगुरु एक गल दसो, कोई इहो जिहा मजदूर भी अमृतसर दे विच रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी होवे? सतगुरु आखन लगे, भी मैं ते कोई इहो जिहा देखिया नहीं। नहीं सतगुरु, जरूर कोई इहो जिहा रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी है। सच जाणो, अज सतगुरु अपने आसन तो उठ के आए ते बाबे नू घुट के वावां दे विच लिया। बाबा, मैं तेरी गल जान गया हां, तू की कहना चाहुंदा? कल मैं ही तेरा समान अपने सिर ते चुक के ले आया सी। जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना, बाबे कोलों सुनी ना गई, अखां विचों हंजू किर आए, रो के आखिया, सतगुरु मैं किड्डा गुनाहगार हां, तुहाडियां बख्शां लैण वास्ते आया सी, तुहाडियां रहमतां लैण वास्ते आया सी, तुहानूं ही समान चुक के लियाया, तुहाडे सिर ते भार चुका के लियाया, मैं किड्डा गुनाहगार। जदों बाबे ने इनियां गल्लां आखियां ते सतगुरु आखण लगे, नहीं बाबा, इंज क्यों करदा है? जेड़े इस दरबार वल नूं आउंदे ने उन्हां दी मजदूरी मैनूं करनी पैंदी है।
ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

लेके आया ते फिर लको के बैठा है। तेरे जिनी पेटा ते आज कोई भी नहीं लेके आया, क्यों लको के बैठा है? जद सतगुरां ने इनी गल आखी ते हंदू केर के आखिया, सतगुरु मैं सोचिया एडा नोटां दा ढेर, सुंदर सुंदर भेटा पईआं ने, ते विच गरीब दी कौड़ी दी की कीमत पवेगी। छाती नाल सतगुरां ने लाया, नहीं ओए गरीबू, आ तेरी एक कौड़ी दे अगे मैनू सारा कुछ तुश पिया नजर आउंदा है। तेरे जिनी भेटा अज कोई नहीं जे लैके आया, इस कौड़ी दे विच प्यार है, इस कौड़ी दे विच शरदा है। देखो भावना दियां गल्लां, एक कौड़ी नाल किड़ियां बख्शां लईयां। सतगुरु आखण लगे जा तेरा लोक परलोक सवार दिता, तेरी गरीबी कट दिती, दुनिया विच भी सुख माणेगा ते मालक दी दरगाह विच भी तेरी जय जयकार होवेगी। शरदा दी गल है, भावना दी गल है। तीसरी कंपनी दे निर्माता श्री गुलशन कुमार जी, श्री दर्शन कुमार जी, जिन्हां दे प्यार दा सदका आपां अज सारे संगत रूप विच मिलके बैठे हां। सतगुरु रहमत करन इन्हां दी ये भावना श्रद्धा जो बड़ी ही लगन दे नाल गुरबाणी दियां कैसटां तैयार करके आप संगत विच पहुंचाउंदे ने, सतगुरु इन्हां दी ये श्रद्धा ते भावना नूं भी स्वीकार करन। आओ मन वेतियां जोड़िए, अमृतसर वल जांदे राइयो, जाना गुरु द्वारे बई, हरि मंदिर दे